0: उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा। यहां न तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न तकान ही होगी। और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुकरे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
1: वहुम यस्तरी

आहिनि ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306

0: जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: नूरे जा पीउ रेडीअ ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया, भला इहो त ॿुध ऐं वठी अचु।
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
6: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

पैसे जी ॻाल्हि ते हलूं पिया त चवंदा आहिनि त जंहिंजे घर में दाणा उन जा चिरिया बि सियाणा पर जेका असांजी सोच आहे जेकॾहिं तव्हां मूंखां पुछंदव त भाउ ही कपिड़ा या ही बूट या ही काई बि शइ तव्हां किथां ख़रीद कई आहे जेकॾहिं मां तव्हांखे चवंदुमि त कंहिं सुठे वॾे शहर मां कराची हैदराबाद मां सखर मां लाड़काणे मां या लाहौर इस्लामाबाद मां ख़रीद कई आहे त तव्हां बिल्कुलु ख़ुशि बि थींदा ऐं उन जी तकड़ि में तव्हां पंहिंजो रक़म बि पुछंदा त भाउ हीअ शइ घणी वरिती अथव किथां वरिती अथव ऐं तव्हांजी बि दिलि ख़ुशि थींदी पर जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू चवे थो यार मां ही जुमा बाज़ारि मां वठी वियो आहियां मां इतवार बाज़ार मां वठी वियो आहियां कंहिं रेड़ीअ तां जेको आहे सो वरिती आहे त तव्हां ऑटोमेटिकली तव्हांजो जेको चहिरो उहो थोरो मायूस थी वेंदो त वाकई यार इहा ख़राबु शइ आहे तॾहिं कंहिं रोड तां वठी आयो हीअं असांजी हिकिड़ी सोच आहे हिकिड़ो असांजो साइको आहे पर ॾिसो त असां जेके आम ज़िंदगीअ में जेके नंढड़ा ॻोठ आहिनि वॾा शहर आहिनि बिग सिटी आहिनि तमामु त उन जे हवाले ते असां पैसनि जी ॻाल्हि ॾींदासीं त जेके असांजा नंढड़ा बहराड़ी जा ॻोठ आहिनि त असांजा हुते जेके मारूअड़ आहिनि वीचारा जेका ग़रीब तबिके वारा माण्हू त जेका बि ख़रीदारी हूंदी आहे लटनि कपिड़नि जी ऐं दवा धर्मल बि जेकॾहिं असां वठंदा आहियूं त कंहिं अताई डॉक्टर खां वठंदा आहियूं कंहिं हल्के हकीम खां दवा वठंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं लटो कपिड़ो चौपल बि वठणी हूंदी आहे त असां पंहिंजे इलाइक़े जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ मां हिकिड़े नंढड़े शहर मां वठंदा आहियूं पर जेकॾहिं उन शहर जा नंढड़े ॻोठ में जेके असांजो हिकिड़ो विचोलो तबिको हूंदो आहे उहो जेकॾहिं ख़रीदारी कंदो आहे त पाण वरी दवा धर्मल लाइ ख़रीदारी लाइ वरी कंहिं वॾे शहर ईंदो आहे जीअं असांजो सखर आहे लाड़काणो आहे मीरपुर ख़ासि आहे त अहिड़े हिसाब सां उहे माण्हू उन तरफ़ वेंदा आहिनि वरी जेकर तव्हां ॾिसो था त अञा पैसो घणो आहे त इहे वॾनि शहरनि वारा इस्लामाबाद हुजे हैदराबाद हुजे कराची हुजे त उहे माण्हू वरी दुबई में जेको आहे सो ख़रीदारी करणु वेंदा आहिनि भले कहिड़ी बि शइ हुजे जेकॾहिं दवा धर्मल हूंदो त उहे वरी अमेरिका लंडन ताईं बि पहुचनि था सिर्फ़ु ॻाल्हि असुल में इहा आहे त पैसे जी जेकॾहिं जेतिरो माण्हू वटि पैसो आहे त ओतिरो असां थोरो अॻिते वञूं था असांखे इंसानी जेका ख़्वाहिश आहे नफ़्स जी असां उनखे वधीक पंहिंजो इजाज़त ॾियूं था ऐं ॻाल्हि इहा वरी बि अचे थी त जंहिंजे घर में दाणा तंहिंजा चरिया बि सियाणा पर असुलु ॻाल्हि जेका आहे उहा पैसे जी आहे।

जी असीं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में हिन वक़्तु अव्हां खे इंतज़ारु हूंदो ओसियड़ो हूंदो सवाल जो अव्हां खे सवाल नोट कराईंदासीं असांजी अॼु जी जेका शख़्सियत आहे असां उन जी निशानियूं अव्हां खे ॿुधाईंदासीं अव्हां खे उन नाले वारे शख़्स जो नालो ॿुधाइणो आहे त असां अॼु प्रोग्राम में ॿिनि शख़्सियतुनि खे असां चूंड कयो आहे ठीकु आहे त असांजूं जेके ॿ शख़्सियतूं उन जो जेको किरदारु आहे उन जी जेका शख़्सियत आहे कहिड़े हिसाब सां सुञाती वञे थी ऐं उन जो पूरी सिंध में पूरे पाकिस्तान में उन जो हिकिड़ो नालो हुयो ऐं नालो आहे त असांजूं ॿ शख़्सियतूं आहिनि तव्हां अक्सर असांजे पूरे पाकिस्तान में ऐं पूरी सिंध में तव्हां हुन जो फोटू जेको आहे सो ट्रकियुनि ते ॾिसंदा हूंदव जी हा सवाल तमामु आसान आहे ऐं सवाल तमामु दिलचस्प आहे अहिड़ियूं ॿ शख़्सियतूं जेके पूरे पाकिस्तान में आहिनि त उन्हनि जो अव्हां खे नालो ॿुधाइणो आहे उन्हनि जा जेको आहे सो पूरी सिंध ऐं पूरे पाकिस्तान में जेके ट्रकियूं हलनि थियूं उन्हनि ते उन्हनि जा पोयां फ़ोटू लॻल हूंदा आहिनि ऐं उहे ॿई शख़्सियतूं तमामु वॾा नालेवार ऐं क्लासिकल फ़नकार जी हा क्लासिकल फ़नकार नाले वारा जेको आहे सो आहिनि ऐं उन्हनि जा अव्हांखे असांखे तव्हां नाला लिखी मोकिलींदव जी हा त तव्हां नाला असां लिखी मोकिलींदव जेके दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि था त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में ईंदव उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते ऐं जेके दोस्त फेसबुक ॿुधनि पिया त फेसबुक ते असांजी GFM88 जी आई डी आहे असांजो फेसबुक पेज आहे तव्हां उन ते बि सवाल जो सही जवाबु लिखी मोकिले सघो था असांजो स्टूडियो में नंबर आन थींदो मोबाइल जो तव्हां उन ते बि पंहिंजो असांजे कॉल करे तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था असांजो सवाल तमामु दिलचस्प ऐं आसान आहे शख़्सियत असां ॿ शख़्सियतनि जो जेको नालो आहे उहा चॉइस कयो आहे चूंड कयो आहे त असांजो पाकिस्तान सिंध जूं उहे ॿ नाले वारियूं शख़्सियतूं उहे शख़्स जेके ॿई फ़नकार बि आहिनि ऐं उन्हनि ॿिन्हिनि जो जेको नालो फ़ोटू जेको आहे उहो ट्रकियुनि ते हूंदो आहे तव्हां असांखे सवाल जो सही जा उमेद त तव्हां जल्द खां जल्द ऐं असां ॾे मोकिले सघो था त साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं हिकिड़ी ॻोढ़नि जी त अखियुनि मां जेके ॻोढ़ा वहंदा आहिनि उहे दिलि सां ईंदा आहिनि छो त जेका दिलि सां असां रोईंदासीं त असांखां अखियुनि मां ॻोढ़ा ईंदा हूअं बि कुझु ॻोढ़ा अहिड़ा बि ईंदा आहिनि जेके चयो वेंदो आहे त इहे ॻोढ़ा असली न आहिनि इहे पंहिंजो वाघूअ वारा ॻोढ़ा आहिनि इहा हक़ीक़त आहे त जेकॾहिं असां खिलंदासीं त ॻोढ़ा न वहंदा पर जेकॾहिं दिलि सां खिलंदासीं त बिल्कुलु ॻोढ़ा वहंदा आहिनि असुल जेके अखियुनि जा ॻोढ़ा आहिनि उहे रोअण सां न ईंदा आहिनि पर दिलि जे रोअण सां ईंदा आहिनि ऐं तव्हां दिलि सां खिलंदव त उहे ॻोढ़ा बि ईंदा त असुल में ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त दिलि सां कंहिंखे ॻोल्हणु दिलि सां कंहिंसां मिलणु दिलि सां कंहिंसां प्यारु करणु ऐं दिलि सां रोअणु दिलि सां खिलण सां ई अखियुनि मां पाणी ईंदो आहे लतीफ़ सरकार फरमायो आहे त रोअण साण रीझनि धुआ लतीफ़ चई

0: जी हसमिन, प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे। हिन त हलूं पिया कमर्शल ब्रेक ऐं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़। वरी असां सां गॾु तव्हां सां थींदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: सऊदी अरब जे दिफ़ा लाइ कंहिं बि हद ताईं वेंदासीं। सऊदी सिक्योरिटीअ लाइ असांजो आज़म गैर मशरूत आहे। DIG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी अरब टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहे। अरब टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहे। पाकिस्तान हुरमिन शरीफ़ अमेरिका सऊदी अरब खे 48 F-35 स्टेल्थ वेड़ाक जहाज विकिरो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अमेरिकी परॾेह खाते जो चवणु आहे त 24.5 अरब डॉलर जे हिन सौदे में मुफ़ासिलाती औज़ार जहाज़नि जा पुर्ज़ा ऐं मेंटेनेंस बि शामिल आहे। जहाज मिलण सां सऊदी अरब जो दिफ़ा वधीक मज़बूत थी वेंदो ऐं ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण जी सलाहियत बहितर थी वेंदी। पाकिस्तान मके मुआदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। परॾेही तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हूसी हमलनि जी मज़म्मत, हमला नाकाम बणाइण ते सऊदी जे हथियारबंद फ़ौज जी साराह। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हूसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे। बाबल मंदब जी सूरतहाल ते बि घंटी आहे। परॾेही तर्जुमान उमान जी साहिली पटीअ ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तसदीक बि करे छॾी आहे।

0: मार्केट्स ऐं शॉपिंग मॉल्स रात 9 वगे बंद थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात 10 वगे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट्स ऐं कैफेज रात 11 वगे बंद कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शारी मोम जो पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शारी मोम जो नोटिफिकेशन। रिक्स इस्पताल तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदीअ खां आज़ाद। टेक अवे ऐं होम डिलीवरीज सर्विस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ परडेही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमिल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर सलाहकार ऐं सरकारी आफ़ीसर सफ़र कंदा। सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50 सैकड़ो सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फरहमी बि घटि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008569।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 03000310509 03000310509।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूर।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592-120।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंस दा कदमुनाओ द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पा महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई। जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

जी हाँ साईं, मुंहिंजा अॼु प्रोग्राम रोशन सुबुह में अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जूनियर किफ़ायतल आहे जूने जो, असांजो नंढड़ो आहे, प्यारो आहे, तमामु सुहिणो आहे, प्यारो आहे। अॼु हुन जो बर्थडे आहे। असां दुआऊं पिया कयूं जूनियर किफ़ायतल खे, अलाह साईं हुनखे ख़ुशि करे, अलाह साईं हुनखे वॾी हयाती ॾिए। जूनियर किफ़ायतल खे सालगिरह जूं मुबारकूं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

जी हा समिन, प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां अव्हांखे वरी हिकु दफ़ो सवाल नोट कराईंदासीं। त असांजो अॼु जो सवाल आहे, उहे ॿ शख़्सियतूं आहिनि जेके न पंहिंजो के वॾा आफ़िसर आहिनि, न का वॾा ज़मीनदार आहिनि, पर हुन जो पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हलंदड़ ट्रकनि ते हुननि जा फ़ोटू ज़रूरु आहिनि। ऐं उन्हनि ॿी शख़्सियत जी ॿी जेका निशानी आहे, उहे ॿई क्लासिकल फ़नकार बि आहिनि। तव्हांखे उन्हनि जो नालो ॿुधाइणो आहे। जी हा, सवाल तमामु आसान आहे। जेके बि दोस्त सवाल नोट कराइनि पिया, तक़रीबन सभिनी जो सवाल जेको आहे दुरुस्त आहे, सही आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था त असांजो प्रोग्राम में शामिलु थियण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। SMS ज़रिए मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते LRK लिखी, यानी लाड़काना, LRK लिखी, तव्हां स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे शहर नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदो असां ॾे 8881 ते। जी हा, 8881 ते तव्हां सेंड कंदो। ऐं जेके असांजा दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ज़रिए ॿुधनि था, त असांजी ID आहे फेसबुक जी, GFM88 जी ID आहे, असांजो पेज आहे फेसबुक जो, तव्हां हुन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं समुझो तव्हां असांजे मोबाइल ते बि कॉल करे, फ़ोन कॉल करे तव्हां सवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल बिल्कुलु आन आहे, तव्हां कॉल करे सवाल जो सही जवाबु असां ॾे नोट कराए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। जी हा, असांजो नंबर तमामु आसान आहे, 0332-1322-88। ऐं समुझ जा असांजो दिलचस्प ऐं आसान सवाल, असांजूं ॿ शख़्सियतूं आहिनि जंहिंजो पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में जेके ट्रकियूं हलनि पियूं उन्हनि ते उन जा फ़ोटू आहिनि। ऐं जेको आहे सो उहे ॿई वॾा क्लासिकल फ़नकार बि आहिनि।

0: हिट्स।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी।
4: आई अदी, अज ते डाडी खुश पई नजर अची।
5: छो न खुश थे आदी, जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे, ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन। ही दिस सोनियो चोणियो
4: मां भी वही चवा उन के ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

के जरूर याद हों इो अस सवाल बिल्कुल आसान हो सवाल जो जो सही जवाब है वह है असो सिंध जो तमाम सुरीलो फनकार जलाल चांडियो पंजाब जो तमाम बेहतरीन क्लासिकल आवाज़ अताला ईसा खेलवी जी हाँ तमाम सवाल पंहिंजो आसान सवाल हुयो ऐं असांजूं ॿ शख़्सियतूं तमामु बहितरीन आवाज़ जा मालिक पूरी सिंध में पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उन्हनि जो आवाज़ गायकी ऐं तमामु सुहिणो अंदाज़ हुन जो अवां ॿुधो हूंदो ऐं ॿुधंदा बि हूंदव त असांजो जलाल चांडियो ऐं असांजो अताला ईसा खेलवी इहे ॿ तमामु बहितरीन फनकार ऐं हिन जा पूरे सिंध पाकिस्तान में ट्रकियूं हलनि पियूं उन्हनि जा फोटो मां ज़रूरु ॾिठा हूंदा जी असां मुंहिंजा ग़ज़ल जूं चंद सिटूं आहिनि शुहाब नेड़ जा लफ़्ज़ आहिनि ओचिता सावण बरसिया हूंदा ओचिता सावण बरसिया हूंदा प्यार पुराणा छिरकिया हूंदा मोरनि मल्हारी छेड़ी हूंदी ॻोढ़ा ड्रेलनि चटकिया हूंदा सर ते सींद संवारी हूंदई चोॾस चंड चमकिया हूंदा मुर्की मिठी गुज़री हूंदी सारा मंज़र महकिया हूंदा ओचिता सावण बरसिया हूंदा प्यार पुराणा छिरकिया हूंदा।

जिया सिंह जहा प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां जे इंतजार जो घड़ियों खत्म अवां दोस्तन जे नाला जिन दोस्तन भी सवाल जो सही जवाब नो आए तकरीबन तमाम दोस्तन सवाल जो सही जवाब न आए कुछ दोस्तन उको दुको हयो आए चवंदा आहिनि त सवाल जी जेका चालीह पती हूंदी आहे हुनखे बि मञिबो आहे पर असां कॉफ़ी दोस्तनि जो जेको आहे सो चालीह पती मञी आहे ॻोठ मोहल ॾिण माशी लॻे वॾनि मरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं असांजो ॻोठु असू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो ऐं महबूब अली मोरे खां ऐं असांजो सोढल लाशारी बि मोरे खां ऐं असगर अली महर घोटकी खां बख्शण बलोच पनवाकिल खां अहसान अली भुगटी कामरान अली भुगटी ॻोठु रोहल खान भुगटी खां अब्दुल मजीद भुगटी ॻोठु नूरशाह भिटशाह खां अमीर अमर रमेश कुमार कराची खां मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप पीरपुर ख़ासि खां बरकत अली जमाली बलोचिस्तान खां भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं दोस्त आहिनि हाफिज़ नईम लाइ काज़ी क़ुर्बान अली सतो पनो वाकिल खां ॿारनि जी वॾी महिरबानी ऐं अली जान कोरी हमाद कॉलोनी लाड़काणे खां नओ स्टान लाड़काणे खां ज़ुल्फ़कार अली बुरड़ो जूनियर किफ़ायतुल्ला जुणे जो उन जी वॾी महिरबानी ॻोठु ठोला जुणे जो खां ॻोठु मसू हब खां नईम अली मीराणी साईं तारिक़ अली मीराणी ऐं नओं दरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो अली गुल मीराणी सखर खां रुस्तम अली पंवर ॻोठु पुनू पंवर सेवण खां आसफ अली चाचड़ लाड़काणे खां खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई यासमीन मलिक ऐं क़ुर्बान अली ख़ासिकी अली ॻोठु झंडो मरी खां चनेसर भेण मोरे खां फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां चवन कुमार कोहली कुनरी खां ऐं सोराब मंगरियो बकापुर खां गुलाब खान कुंभर सिकंदर अली मक्सी ॻोठु कंगन खां हाफिज़ रियाज़ कलोड़ो ॻोठु फाज़ुल कलड़े खां अब्दुल गफ़ूर जतोई ॻोठु अली हसन जतोई पीरशिर खां ऐं मोहम्मद दाऊद जिस्काणी मीरपुर ख़ासि खां फरमान अली खखराणी अबड़ो घोटकी खां ऐं अशफाक चांडियो ॻोठु आहे लॻ खेरोदर खां ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ऐं सभिनी जी पसंदि जलाल चांडियो ऐं अव्हां जी शख़्सियत बहितरीन सुञाणप जलाल चांडियो।

जी आसमिन जलाल चंडे जे इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इंशाल्लाह अवां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो खे ॾींदा इज़त अलाह निगाहबान।

0: हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: चारो मसालो जी सुन्याणप, डिसी करे घरे जान चारो मसालो, ढोरे जो हार, ढोरे से चारो मसे जे पंसार स्टोर, आई जटर खां नालो वठी खरीद करियो।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस फूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटो शोरूम मेहरापुर के रेट दे दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर, राब्ते 0320-1800।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर आए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें। सिर्फ इस्तेमाल एक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 and 0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
7: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हां साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हिय चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थेन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी, वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीए थे ता बुधाइन, बुध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं, हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर
4: चारो अजमेदार जहां सालन खां आज़मायल ढोर चारो
5: और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: सऊदी अरब जी सलामती ते ठाव नथो थी सके। सऊदी जी सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार आए। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी टीवी के खिताब डींदे चयो आए त सऊदी अरब जी सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आए। कैसा भी जारान कदमन खिलाफ सऊदी भारन सा गड बीठल आयो। पाकिस्तान हरमैन शरीफें जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए। कें भी जारत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी।
1: खबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा ॾह खारजी दहशतगर्द मारिज विया। बारूदी सिरंग जे धमाके में पाक फौज जा छह जवान बि शहीद। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान छह खारजी मारिजी विया। चकरियुनि दौरान चार दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कार्रवाई दौरान छह जवान बि शहीद थिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शरीफ़ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार।
0: ईरान मुआदो करण चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाए तैयार न आए। असा अड़ो मुआदो कंदासी जेको असा लाए बेहतर हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है। जैसे ईरान से हमलो न क्यों आ तो ईरान एटमी हथियार ठाए वे।
1: वज़ीर आज़म पारां नाणे जे मटा सटा वारा ज़खीरा 21.4 अरब डॉलर ताईं पहुचण ते सराई जो इज़हार। शहबाज शरीफ चयो आहे त मुआशी टीम पारां सही रुख में खयल कदमनि ऐं महिनत सबब नाणे ज़खीरनि में वाधि थी आहे। एक्सपोर्ट में बहितरी ऐं माली ज़ब्त नाणे ज़खीरनि में वाधि लाइ अहम किरदार अदा कयो। आलमी मार्केटनि ताईं पाकिस्तान जी ॿीहर रसाई आलमी एतमाद जी बहाली जो अक्स आहे। नाणे जे ज़खीरनि में वाधि आलमी मुआशी मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण लाइ असांजी सलाहियत वधाईंदी।
0: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा पुलिस ऑफिसर के तलब करण बदर लिखत में जवाब वठण जो फैसलो। कमीशन गुजर ॾींहं वारे कार्रवाई जो लिखत में हुक्मनामो जारी कर छो। एडिशनल आईजी आजाद खान ए डीआईजी उमर फारूक के लिखत में सवाल जा जवाब दियण की हिदायत।
1: कंदकोट में जस्तम पारा सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली ऐं धरणो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध असांजो तारीख़ी वतन आहे। सिंध जे ख़िलाफ़ कंहिंखे बि साज़िश करण न ॾींदासीं। कंहिं बि सिंध खे टोड़ण जी साज़िश कई त मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो वेंदो। सिंध सिंधियुनि जी आहे ऐं हमेशह रहंदी।
0: मीरपुर साकरो वेझो पाणीअ जे वारे तां ॿिनि धुरनि में जहिड़ो 25 ॼणा ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। वारिया ऐं ॾाहोड़ा बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में पाणी जे वारे तां जहिड़ो थियो। लठियूं इसरोटा लॻण सबब धुरनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: ऐं खैरपुर भरिसां मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जे गोट ते चढ़ाई और तने ॿारनि ते मुबैन तशदुद फुरलुट। 5 ॼणा खंभे गुम करण जो इल्ज़ाम। ॻोठाणनि मूजिबि पुलिस ॻोठ वाहिद बख़्श रिंद ते चढ़ाई करे तशदुद जो निशानो बणायो। पुलिस 5 ॼणनि खे खंभे वई आहे। नोटिस वठी फुर कयल सामान वापसि कराए नौजवान खे आज़ाद करायो वञे।
2: ये FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
3: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
2: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
3: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
2: छा छा?
3: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हिय चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन था, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
2: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
3: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
2: मां हाणे ही तो वणा त जी असी भी खीर वधायो ए नोट कमायो।
3: हां सही हां।
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونو درولی هم شی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
0: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
0: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
9: आ अंगन जी तू कयो गदी दी गुजारूंगा। السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
9: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
10: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
9: نہ ادا؟
11: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
9: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
10: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
9: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
11: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
12: 03013992836.
2: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: खत्म हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: में मौजूद आहिन। फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-91-8851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: केपीअ जे शहर कुआट में पुलिस लाइन भरिसां धमाको ऐं फायरिंग केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी कुझ जी शहीद थियण जा इतला पुलिस मूजिब पुलिस ज़रियनि मूजिब पुलिस लाइन भरिसां मस्जिद खे निशानो बणायो वियो आहे ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे
4: with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
5: सऊदी अरब जी सलामती ते ठार नथो करे सघजे सऊदी जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त सऊदी अरब जी सिक्योरिटी लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे कंहिं बि जारहाननि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं पाकिस्तान उर्मिन शरीफ़नि जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे कंहिं बि जारहियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं
3: यमन में सरकारी फौज ऐं हुसैन जे तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं 63 ॼणा मारिजी विया केतिरा ई ज़ख़्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो आहे जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फरार थी विया आहिनि
5: ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु नाहे असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो अमेरिका ईरान जे एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तमु करे छॾी आहे
3: सऊदी अरब ते हमला यूएई खुशहाली ऐं सलामती लाइ ख़तरो आहिनि बोरान जो ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे यूएई सदारती सलाहकार अनवर प्रकाशी चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ ऐं मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु घुरिजनि

0: वजीर आजम जे फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रुपया जारी। अहल वापेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदरि पेट्रोल पंप्स खे अदा कई वेंदी। पेट्रोल वारे वज़ारत मौजूद वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्रामनि लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया असिस्ट बैंक खे स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि।
1: इस्लामाबाद में एहतजाज खां केर बि रोके नथो सघे। का बि ज़ाती एजेंडा नाहे। क़ौम साथ ॾिनो त हालतूं तब्दील थी वेंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त लेवीअ जो भतो ऐं आईपी कई वञे, सस्ती मानी मिलणु घुर्जे।

0: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा पुलिस ऑफिसर के तलब करण बदरा लिखित में जवाब वठण जो फैसलो कमीशन गुजरियल डी वारे कार्रवाई जो लिखित में हुक्मनामो जारी कर छोड़ो। एडिशनल आईजी आजाद ए डीआईजी उमर फारूकी के लिखित में सवाल जा जवाब देने की हिदायत।
1: सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ मुख्तलिफ शहर में रैलियों ए धरना कंदकोट में जीए सिंध कौमी महाज पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाजी रैली कड़ी धरनो आयो हो। टंडरो आद में खास केली राजूनी इतिहाद पारा सिंध में मुझो साह के उनवान हेठ रैली कड़ी वही। सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द सूबन के हक डेण जो फैसलो जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारा भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाज कयो वयो। मुजाहिरीन पारा सिंध खिलाफ साजिशू खत्म करण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर अई गोश्त बधाए अवहां के खुशहाल बनाए हर पंसार अई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्व सास्की वरकवल माहिरवई जकच हम दग सास्की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिकर छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मोहम्मद उमर गोरी 03015 1574
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुंशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: KPJ शहर को 8 में दहशत गर्दन जो पुलिस लाइन बरसा मस्जिद ते आपघाती हमलो पंज पुलिस अहलकारन समेत 16 शहरी शहीद टीह खां वधीक जख्मी آئی جی کے پی حملے کی تصدیق کردے چھا تو دہشت گردن جا حملہ حوصلہ گھٹائے نتھا سکن کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی پارا مزاحمت رپورٹ طلب صدر آصف علی زرداری بھی حملے کی مزاحمت کردے چھا تو زخمین کے بہترین طبی سہولتوں فراہم کی وجن ملک میں امن لائے دہشت گردن جو خاتمہ ضروری ہے
4: پاکستان fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia, to any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters.
3: सऊदी अरब की सलामत के ठा नथो करे सके सऊदी की सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करने लाए तैयार है डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे है तो सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत है कैसा बेजारण कदम से सऊदी भारन से गड बीठल आयो पाकिस्तान हरमैन शरीफेन की हिफाजत लाए उत मौजूद है कें भी जारियत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी यमन में सरकारी फौज ए हुसैन की तंजीम अंसारुल्ला में झड़पू 63 जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्ला के थाकन के निशानो बनाए वो है जैसे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थो है केतरन ही हंधन ता बागी फरार थी वया आयन ईरान जंग बाबत वडो फैसलो करण वारो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करण वारो फैसलो भी थी सके तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आए त ईरान मुआहदो करण चाहे तो पर इन वक्त मुआहदे लाए तैयार ना है असा अड़ो मुआदो कंदी जो अस बेहतर होंद अमरीका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है सऊदी अरब से हमला यूएई के खुशहाली ए सलामती लाए खतरो आन बोरान के खात्मे लाए गाल सिलसिलो शुरू किया वे यूएई के सदारती सलाहकार अनवर चयो आए त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाकात में माजी के विसारे अगते वधण ते इतफाक थियो आए मुस्तकबिल लाइ पहिरियों कदम हमला रोकण घुर्जन खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वया बारूदी सिरिंग जे धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी मारजी वया हंगूमे भी चकरियों दौरान 4 दहशतगर्दन के जानम भेड़ो कयो वयो कार्रवाई दौरान 6 जवान भी शहीद थिया सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सेस के भेटा पे शहीद जवान कौम जा हीरो करार वजीर आजम के फ्यूल रिलीफ पैकेज लाए 25 अरब रुपया जारी अल वापेंदर की रकम 48 कलाक अंदर पेट्रोल पंप्स के अदा कई वेंदी पेट्रोलियम सर वारी वजारत मूजिब पेट्रोल के रिलीफ प्रोग्राम लाए 3 महीन की रकम रखी वही है पेरे महीने लाए 25 अरब स्टेट बैंक के जारी कया वया इस्लामाबाद में एहतजाज का केर भी रोके नथो सके का भी जाती एजेंडा ना कौम साथ डनो तो हालतू तब्दील थी वेंदी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम चयो त लेवी जो भत्तो आईपीपी खत्म कई वे सस्ती मानी मिलन घुर्जे कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती पुलिस ऑफिसर के तलब करण बदर लिखत में जवाब वो फैसलो कमीशन गुजरल डी वे कार्रवाई जो लिखत में हुक्मनामो जारी करे छडियो। एडिशनल आईजी आजाद खान ऐं डीआईजी उमर फारूक खे लिखत में सवालनि जा जवाब ॾियण जी हिदायत। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कंदकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडरो आदम में ख़ासि कली राजूणी तात पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान सां रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो, जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। हज़ार मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो। फैज़गंज में पसंद जे परणे तां ॻोठ ते हथियारबंदनि जी का। ॻोठ जुमो राजपुर में हथियारबंदनि का करे फायरिंग कई। पुलिस वाके वारे हंधि पहुचण बैदि चकरियूं। ॻोठाणनि मूजिबि नौजवान मुर्तज़ा ऐं मेरापुर वासिन नारी हुर पसंद जो परणो कयो। जोड़ो पसंद जे परणे बैदि गुम आहे। नारीअ जे वारसनि घरनि ते चढ़ाई कई आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असली चीजान चारों मसालों जी सुनियान पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी है 2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारों मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Subha ki chai ya traffic ka jam.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: के पी ए जे शहर कुआट में दहशत गर्दन जो पुलिस लाइन भरसा मस्जिद ते आपघाती हमलो पंज पुलिस अहलकारन समेत 16 शहरी शहीद टीहन का वधीक जख्मी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारजी विया आई जी के पी चयो आए त दहशतगर्दन जा हमला हौसला घटाए नथा सकन सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी के पी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी बियन पारा दहशतगर्द हमले की मजामत जख्म के तिबी सहूलतू डेण की हिदायत
5: Pakistan fully stands with the Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan and shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
4: Saudi Arab je salamati te thao natho kare sakje Saudi ji salamati lai Pakistan har had karan lai tayar hai. DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry Arab TV ke interview dinde cheyo aaye ta Saudi Arab ji security lai Pakistan jo azam gair mashroot hai. Kai bejaran kadman khilaf Saudi bhairan sa gad bithal aayo. पाकिस्तान हरमैन शरीफेन जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए कै बेजारत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी यमन में सरकारी फौज ए हुसैन जे तंजीम अंसार लाए में झड़पू 63 जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी यमनी सरकार फौज जे मौजूद अंसार लाए जे थाकन के निशानो बनाए वयो जैसे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी माली नुकसान थे केतर ही हंधन बागी फरार थी वया ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाय तैयार ना है असा अड़ो मुआदो कदासी जो अस लाय बेहतर होंद अमेरिका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर चुकी है सऊदी अरब से हमला यूएई के खुशहाली ए सलामती लाय खतरो बोरान के खात्मे लाय गालन जो सिलसिलो शुरू कयो वने यूएई के सदारती सलाहकार अनवर चयो आए त ईरानी सदर सा वली अहद की मुलाकात में माजी के विसारे अगते वधण ते इतफाक थियो आए मुस्तकबिल लाय पहिरियों कदम हमला रोकणो हुजण घुर्जन खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारजी विया बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी मारजी विया हंगूमे भी चक्रन दौरान 4 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो कयो वयो कारवाइन दौरान 6 जवान भी शहीद थिया सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस के भेटा पेश शहीद जवान कौम जा हीरो करार वजीर आजम जी फ्यूल रिलीफ पैकेज लाए 25 अरब रुपया जारी अहल वापिंदर जे रकम 48 कलाक अंदर पेट्रोल पंप्स के अदा कई वेंदी पेट्रोलियम वारे वजारत मूजिब वजीर आजम जे रिलीफ प्रोग्राम लाए 3 महीनन जी रकम रखी वई आए पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया स्टेट बैंक के जारी कया वया आहिनि

कोरट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कतल केस में मकामी अदालत के कार्रवाई का रोके छो। सिंध हाई कोर्ट के केस के सेशन कोर्ट मुंतकिल करण के फैसले खिलाफ अपील से बुधनी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराह में ब रुकनी बेंच बुधनी कई। वकीलन जा दलील बुधन बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के वधिक कार्रवाई का रोके छो। अदालत धुरन के नोटिस जारी कंदे बुधनी 13 अक्टूबर तक मुलतवी करी।

0: कराचीअ में पीटीआई जो तेलघन में वाद ऐं सिंध में करप्शन ख़िलाफ़ सिंध असेंबली आॾो गॾा गॾनि ते एहतजाज। पीटीआई एमपीएस जो करप्शन कंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। सिंध हुकूमत जे तर्जमान सादिया जावेद चयो आहे त पीटीआई वारा इल्ज़ाम लॻाइण खां पहिरीं गोगीअ में करप्शन जो हिसाब वठनि। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कंदकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडरो आदम में ख़ासि केली राजू इताद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान सां रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द। सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकमबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो। फैज़गंज में पसंद जे परणे तां ॻोठ ते हथियारबंदनि जी का ॻोठ जुमो राजपुर में हथियारबंदनि का करे फायरिंग कई। पुलिस वाके वारे हंधि पहुचण बाद चकरियूं। ॻोठाणनि मूजिबि नौजवान मुर्तज़ा ऐं मेरापुर वासियुनि नारी हूर राजपुर पसंद जो परणो कयो। जोड़ो पसंद जे परणे बाद गुम आहे। नारीअ जे वारसनि घरनि ते चढ़ाई कई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03005569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-2196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, जख्मियों के तिबी सहूलत ॾियण जी हिदायत.
4: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Hermano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
3: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाव नथो करे सघिजे. सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे. कंहिं बि जारहाणनि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं. पाकिस्तान शर्फियुनि जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे. कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं. यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी. यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं जे नतीजे में हुसन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे. केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि. ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयार न आहे. असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तमु करे छॾी आहे. सऊदी अरब ते हमला UAE जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि. बहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे. UAE जी सदारती सलाहकार अनवार करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो. मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुर्जे. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. بارودی سرنگ جی دھماکے میں پاک فوج جا 6 جوان بھی شہید. ISPR موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشت گردن کے مارے ویو. انگو میں بے چکرن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیو ویو. کاروائن دوران 6 جوان بھی شہید تھی ویا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش. شہید جوان قوم جا ہیرو قرار.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी ज़रूरत आहे.
6: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार. 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा.
7: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराय तो जवाबित लागू है.
8: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
9: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
10: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
11: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
12: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
11: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
12: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

Assalamu alaikum everyone and a very very cool good evening to all of you. Aapke sab ke liye bahut sara pyar, aadab aur aap kahenge ki main kahan reh gaya tha. Are janab is tarah to hota hai is tarah ke kamon mein. Main thoda kahin reh gaya tha aur kabhi kabhi kuch ghatnaen kuch aisi cheezein ho jati hain ki banda puzzle ho jata hai, banda hairan aur pareshan ho jata hai ki aakhir ho kya raha hamare saath. Khair janab, aap sabhi dost kaise hain? Umeed hai ki jahan kahin pe bhi honge bilkul theek thaak honge. Din kitna hi masroof kyun na ho aapka, agar kisi shaam kisi khoobsurat baat se shuru ho jaye to thakan bhi muskura deti hai. Bilkul janab, aur aaj ki shaam bhi kuch aisi hi hai kyunki agar 2 ghanton mein hum baat करेंगे मोहब्बत की, दोस्ती की, मुस्कुराहटों की, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की, और हाँ कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिन पर आप कहेंगे अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कर दी आज पाक ने. तो जनाब रेडियो की आवाजों को जरा तेज कर लीजिए, चाय का कप करीब कर लीजिए, और अगर साथ कोई बैठा है तो उससे भी बता दीजिए. खबरदार, अगले 2 घंटे GFM 88 पर सिर्फ मोहब्बत, मस्ती और एंटरटेनमेंट है, और यह है आपका अपना प्रोग्राम GFM 88 से. आई लव यू ऑल. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. तो जना मैं हूं आपका अपना मेजबान, आपका अपना अशफाक, और आज शाम की महफिल को यादगार बनाने के लिए हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ. तो चलें जनाब, आपको अपना नंबर आपके गोश गुजार करते चलें, जिस पर आप कॉल करके हमें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, सारा दिन आपका कैसा गुजरा, और जनाब खूबसूरत बात आप बताएंगे मुझे हर चीज के बारे में कि आज आपने क्या खाया क्या पिया, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, कुछ बातें करूंगा जो आप यकीनी तौर पर मुझे बताने के मूड में होंगे. तो जनाब आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर. तमाम के कॉल कर सको था 03000113488 पे, तमाम के मैसेज भी कर सको था. बिल्कुल जनाब, टाइप क्यों पांजे मोबाइल में मैसेज में बनी करे, टाइप कहो SKR स्पेस दियो, पांजो मैसेज लिखो, आई सेंड कहो 8881 ते. बिल्कुल जनाब, तव्हां जा मैसेज भी असां शामिल शो कंदा से, ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां जी कॉल्स भी असां शामिल शो कंदा से, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको असांजो FM वारो पेज आहे, GFM88 नेटवर्क वारो फेसबुक पेज आहे, तव्हां उते बि वञी करे असांखे मैसेज करे सघो था, पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि असांखे ॿुधाए सघो था. बिल्कुल जनाब, त हाणे असां देरि बिल्कुल बि कोन था कयूं, ऐं तव्हांखे ॿुधायूं था शो जो सुपर हिट नंबर, त जीअं तव्हां मैसेज बि टाइप करे वठो, ऐं जेको आहे तव्हां मूंसां ॻाल्हियुनि लाइ पंहिंजे माइंड खे बि फ्रेश करे सघो, ऐं अटेंशन थी सघो. बिल्कुल जनाब, छो त 5 खां 7 ताईं असांजो ऐं तव्हांजो साथ रहंदो आहे पंहिंजे प्रोग्राम आई लव यू ऑल में, ऐं शाम जो ई खूबसूरत पहर आहे, ऐं जेको आहे तव्हां 2 कलाक ताईं मूंसां गॾु रहिजी आहियो, त मां हींअर तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ॿुधायां थो पाकिस्तान जो हिकिड़ो ज़बरदस्ती मशहूरु ज़माना सॉन्ग पसूड़ी. छो त पसूड़ी जेको सॉन्ग आहे उहा जेको आहे अली सेठी ऐं शाह गिल जी वॉइस में आहे, ऐं कोक स्टूडियो सीज़न 14 में इहो सॉन्ग जेको आहे रिलीज़ थियो हुयो, ऐं हाणे तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त इहो सॉन्ग जेको आहे 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस करे चुको आहे September 2026 में. बिल्कुल जनाब, मेजर माइल स्टोन फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक एंड कोका कोला कोक स्टूडियो, ज़बरदस्त जेको अचीवमेंट आहे असांजे इन सिंगर्स लाइ, असांजी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री लाइ, त इहो ज़बरदस्त सॉन्ग बिल्कुलु तव्हांजो इंतज़ारु थो करे, त मां बिल्कुलु तव्हांखे वेट नथो करायां, ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो ज़बरदस्त हिट सॉन्ग पसूड़ी जनाब शाह गिल ऐं अली सेठी जी वॉइस में. तव्हां हिन हिट नंबर खे ॿुधो ऐं खोड़ सां एंजॉय कयो.

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। पसूड़ी बहुत प्यारा सा गाना आपकी समातों की नजर की, और बहुत से लोग इस कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि जनाब ये आखिर पसूड़ी वर्ड क्या है और ये किस लिए इस गाने में शामिल किया गया कि पसूड़ी आखिर व्हाट्स रॉन्ग विद पसूड़ी। बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो जनाब बुनियादी तौर पर ये एक पंजाबी लफ्ज है जिसे उर्दू में कश्मकश, तनाजा, मखमसे या परेशानी के लिए यूज किया जाता है और कहा जाता है, और वो दिल की उलझन होती है जिसके फैसले या हम कभी कभी किसी सूरत हाल में फंस जाएं, तो दिलो दिमाग के फैसले के बीच में, तो पसूड़ी उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो खैर, आपके या जिसके भी दिमाग में ये पसूड़ी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था तो मैंने वो दूर कर दिया। तो खैर जनाब, वक्त है आज की खूबसूरत बात करने का। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि कोई आपको कितना चाहता है, मोहब्बत ये भी होती है कि आप किसी की जिंदगी में कितनी खुशी लेकर आते हैं। इसीलिए आज किसी एक ऐसे इंसान को खुश कर दीजिए दोस्तों। जरूरी नहीं कि फूल दें, जरूरी नहीं कि तोहफा दें या कोई बहुत बड़ी चीज करें या डिनर पे ले जाएं, लंच पे ले जाएं। ना ना ना ना ना, मैं ये खर्ची वाली बातें आपके साथ करते ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जनाब अगर आपको किसी को आपको खुश करना है तो आप बस एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर लें, उसे कह दें जिससे आप कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। यकीन करें दोस्तों, यकीन करें, कभी कभी एक छोटा सा जुमला किसी का पूरा दिन बहुत बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है। तो अगर आपने किसी का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो आप उसको लिख भेजिए, आई लव यू माय दोस्त। तो जनाब हम लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते लाइन पर हमारे साथ कौन है, क्योंकि आप भी बड़ा वेट कर रहे हैं और हम आपको ज्यादा वेट नहीं करा सकते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, मुझे प्यारो मिठो भा खेर असा सबरी सा घर मौजूद है। आई उनके चओ आई लव यू यार, तो तमा कहें के वो लव्स चवंदा
1: असा साईं कहके न चला पाजो ओला भी चवंदा से कहके न चाते चलो प्यारा भाईर होवे दोस्तन।
0: हां सही सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, ता बिल्कुल पांजे पैरन प्यारन भाईर ने दोस्तन के शामिल कियो
1: साईं ता के तमारी पूरी टीम जाते आवाज वन से भाईर बिन रुबु तना सब के अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजा प्यारा भा, केड़ो गानो बुझनो चाहयो था
1: साईं? सम्मान मुराली अब चाहयो
0: केड़ो?
1: तू भी जिदी मां भी जिदी यारी की हालत।
0: वाह वाह वाह, ये जिद ता वडी खराब गाला।
1: हां सही
0: सही सही सही, ते तमा भी जिदी आयो या बस ये सादड़ा आयो मुंह मांगे?
1: ना साईं असा जिदी ना आयो साईं, असा सबर करे ना तो कुछ गालाइना सबर में हले आयो ना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तमाम घणी सुठी हैबिट आए, तमाम घणी सुठी आदत आए, त इंसान में ये खासियत होजन खपे त वो तमाम घणो साबरीन भी होजे, तमाम घणो बर्दाश्त करण वारो होजे, त वो मानु हमेशा कामयाब थिंदो आ।
1: साईं नंदी उमर गुजारिश कहूं हम 50 के मथे हूं, असा हर दुनिया के वक्त के दिसी पासे रहूं।
0: एग्जैक्टली, तमा हर ऊंच नीच डिठी आहे, हर कें जो मानु जो मिजाज तहां डिठो आहे, हर कें के आजमायो आहे, तरी तमा आज बिल्कुल साबरीन आई सब्र शुक्र सा आई जको आहे इग्नोर करण वाली शख्सियत थी वे आयो ना, ते हर नंडी नंडी गाल के इग्नोर कयो छड्यो उस बा जी भाई जनाब उनकी बातें बड़ी प्यारी थी कि वो ये कह रहे थे कि मां तमाम घणो साबरीन आया आई नंढी नंढी गालन के मां लेखन तो ही ना और जो है बहुत सारी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं और माफ कर देना भी बहुत अच्छी बात होती है, सबर करना बहुत अच्छी बात होती है। लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब खेरे साहब सबनी सांगाडो
1: सारे सैयद इमदाद शाह बुखारी।
0: सैयद इमदाद शाह बुखारी साहब, केड़ा हाल चाल है तहां जा सैयद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। की हले थी जिंदगानी?
1: जिंदगानी बस वेगन वांगुर हले थी।
0: हाँ मैं छा समझा था वेगन वांगुर की माना वेगन वांगुर जी धिका धाबा खाई दिया डब डब डब करे हले
1: ना दिसो ना वो भी गाल सही है पर जिंदगी में दिसो वेगन में केतरा मानु इंदा ना जिंदगी में भी केतरा मानु अचरा इंदा पर सबक मानु सिखे दे।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात की आपने, तो बड़ी फिलोसोफर वाली बात कर दी यार, आई लव यू।
1: मेहरबानी
0: सैयद नालो साहब देवता
1: इमदाद
0: शाह बुखारी साहब, इमदाद शाह बुखारी साहब, असो प्रोग्राम तक लगे सब गाली छो
1: मुझा
0: लिसनर मुझे तमाम घना प्यार आया आई लव यू ऑल तरी तो मां प्रोग्राम नालो आई लव यू लिख रखे आप
1: यो सही आला पर असा को वधिक तांगी कोई भी तारो न होंदो है तां प्रोग्राम दे तांगे प्यारो
0: थैंक यू सो मच अदा थैंक यू अमदाद साहब यो बताओ शमन जो गानो प्ले तो क्या आदे जी फरमाइश थे तू भी जिद्दी मां भी जिद्दी कहन दे नाल तकन चायो
1: यो शमन जो गानो तो सही तो आलायो पर आ काम बोल के जो मत कायो आ तो मेहरबानी किया
0: केड़ा
1: आ काथे रहयो घर काथे रहयो उधर पंद तो करा यार जो
0: काथे रहयो गाय तो बुधायो थोड़ो घणो ते जी में बोलण में आसानी थे पूरी पूरी कोशिश कंदो महीने बाद पहिरियों जिद्दी वारो गानो प्ले कंदो पोइ इहो ठीक आ दा
1: चलो ठीक आ मारी मर्जी बस दोस्त के हाथ ना
0: हां हां बिल्कुल बिल्कुल
1: सबका प्यारे असंग प्यारो दोस्त तमार मोमन बक्सी सरवानी साहब
0: जी जी
1: रियाज जिस्कानी आहे इमाम जिन बंबरो आहे जिथे जिथे आवाज़ वञे तो जेके जेके दोस्त तव्हांखे ॿुधनि था सभिनी दोस्तनि खे सलाम ईंदो आहे तर्शारी तरफ़ा
0: वालेकुम अस्सलाम इमदाद साहब तव्हांजो तमामु घणो थैंक्स सईद इमदाद साहब असां सभिनी सां गॾु हुयो पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो आदाब थैंक यू हमारे साथ हैं जनाब बहुत प्यारे से सैयद इमदाद रिशा साहब और अब लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
0: सलाम आदाब हां जी केर कुर्बान खास के लिए तो कोनी असां सभिनी सां गॾु
2: ओ यो सागुन
0: जनम भैया दे दिसो माता के सुनाणे वे वहां
2: बिल्कुल जो ता या पुराना बाजूक लिख कर रहे हैं
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल ता जो गलहन जो स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट आ ना मतलब तमाम घणो इंटरेस्टिंग आ ता जो गलहन जो अंदाज है ता जो जो लहजो आ ना वो खबर पेजी बिंदी आ ता कुर्बान साहब आ सबनी से गद मौजूद आ है
2: मेहरबानी कुर्बा वात्री में ते मुबारकू या के आज मुबारकू जन मना
0: अचानक हैरत थी ना मुझे प्रोग्राम सुनो थैंक यू सो मच कुर्बान भाई कि हले थी तीन जिंदगानी जिंदगी तीन कि हले मुझा जानी
2: बस शुक्रा रब
0: लाजवाब करे छो
2: कुछ दोस्त बुधन पा
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: कातड़ी का गुलाम रसमी सोलंगी खालक लाचारी
0: सभी के सलाम वालेकुम सलाम पांजो खास ख्याल रखो थैंक यू हमारे साथ है जनाब बहुत प्यारे से हमारे कुर्बान खास के लिए भाई अब गाना वाना चलाने का टाइम आ चुका है जनाब क्योंकि इसके बाद है ब्रेक और ब्रेक हम चाहते हैं कि जनाब ब्रेक भी टाइम पे चल जाए तो इस गाने को सुनिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ रहिए।

0: एक ऐसा खतरनाक सवाल है ना। बिल्कुल जनाब, अगर आप किसी को कहेंगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, या कोई आपसे पूछेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो ये जवाब क्या होगा? अगर आप कहेंगे हाँ तो भी फंसेंगे। अगला सवाल क्या होगा? कितनी। और अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा, तो अगला सवाल होगा कितनी ज्यादा। और अगर आपने कहा कि बस बहुत ज्यादा, तो जवाब आएगा अच्छा फिर कल रात मेरा मैसेज देखा क्यों नहीं था? भाई मोहब्बत नहीं, ये तो FBI इन्वेस्टिगेशन है। तो जनाब इस तरह के बहुत सारे सवाल का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कहते हैं कि सवाल जवाब जो है सोच समझ के किया करें और हमेशा खुश रहा करें। आपका अपना अशफाक आपके साथ है और अशफाक जब आपके साथ होता है तो हम चाहते हैं कि आपको फुल ऑफ टाइम इंटरटेनमेंट मिलती रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेल हम मैसेजेस के जाने पड़ते हैं जो कि हमें बड़े प्यार के साथ भेजे गए हैं। मैसेज है गोट मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो तवां जो शो जबरदस्त है, सॉन्ग बुधराजो तेरा मेरा है प्यार अमर। ओके जनाब, तेरा मेरा है प्यार अमर, क्या बात है जनाब, बहुत प्यारा सा गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे, आप बस हमारे साथ रहिए। और जनाब गोट मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको, थैंक यू सो मच जनाब। इनके दो मैसेज हमें आ चुके हैं, तो तैयब थेबो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोट मोहम्मद तैयब थेबो खां तवां असांखे मैसेज किया आहिनि, तव्हां तमामु घणो थैंक्स। अब्दुल रज़ाक साहब आहिनि, अॼु असांखे कलाम ॿुधायो हथ मथे क्या सीं ॾाढो, क्या बात है जनाब। और अब्दुल रज़ाक वधीक चवनि था मोहम्मद खान कुंभार सरदार मोहम्मद अली कुंभार हालीपुर ट्रस्ट आप खां शो नाइस आहे, कुझु सिटियूं शायरी जूं। जी बिल्कुल जनाब, कुझु सिटियूं शायरी जी असां ज़रूरु पढ़ंदासीं, त पढ़ियूं जनाब। कह दो कि वो मेरा है, कहीं ये डर के वो मुझसे जुदा तो नहीं, कहीं ये दुआ के उससे मिल जाए सारी जहां की खुशियां, कहीं ये डर है कि उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं है, कभी ये खौफ के वो खुशी मेरी बिना तो नहीं, कभी ये खलिश है कि वो जमाना मुंतजर उसका, कहीं ये अच्छा। इन्होंने जो लिखा है ना उर्दू, तो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है इनकी उर्दू, तो शायरी बहुत अच्छी है वैसे। थैंक यू सो मच डेडिकेशन मोहम्मद खान कुंभार। अब्दुल रजाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी सी शायरी हमें लिख के भेजी है। हम अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते लाइन पे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। खैर सां सभिनी सां गॾु मुंहिंजा प्यारा भाउ गुलाम अब्बास मला साहब अभी जानू खां, कहिड़ा हाल चाल आहिनि गुलाम अब्बास भाई? सफ़ा फर्स्ट क्लास आहे। त थोरी रेडियो जी आवाज़ थोरी घटि करे छॾियो त मूंखे मुंहिंजी आवाज़ ई अचे थी। अच्छा रिपीट अचे थो मुंहिंजी आवाज़। ओके ओके ओके हसन भाउ, ॿिया छा कंदा आहियो तव्हां? अच्छा अच्छा अच्छा, कमकार सही लॻो तव्हांजो? माशाल्लाह। हसन भाई कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था अॼु प्रोग्राम में? सॉरी
1: गुलाम अब्बास।
0: अच्छा गुलाम अब्बास कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था? गुलाम हुसैन उमरानी कहिड़ो गानो? ओके ओके ओके, मां सर्च थो कयां मुंहिंजे यार खे मुंहिंजा सलाम चइजांइ। ओके अची विया जा तव्हांजा सलाम, तव्हां वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। कंहिंखे डेडिकेट कंदो इहो गानो? वालेकुम असलाम, थैंक यू गुलाम अब्बास, अभी जाने का तव्हां असांखे कॉल कई आहे। थैंक यू सर। जी जनाब गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत प्यारे से दोस्त हमारे साथ थे अभी जानू से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है जनाब, वहां वहां तक तमाम दोस्तों को हम बताते चले अपना नंबर 03000113488 हमारा नंबर है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भा प्यारा चार थी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुझा प्यारा मिठा भा, केड़ा हालचाल है, केर असन सबनी संग गडो है?
2: सरला जैसा अमीर बिस्त मंगनार जिलो गोट की मिश्री गोट मंगल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्या ठीक ठाक आयो दा, मजे में आयो?
2: सब खैर टीम ठीक लगी पई है?
0: सफा मस्त लगी पई है, असाजी टीम जबरदस्त लगी पई है। तमा यो बुधायो ता छा कनायो दा?
2: बस तमा एक जगह एंट्री वतो आ खंदा रा सजी
0: मा विसरी विदो मा छा किया दा,
2: याद गंदो कर ले यार। अच्छा के कादर कोलोड़े यार गल याद नहीं आने तमा ता याद करे ने।
0: अच्छा अच्छा, ता जो काम का ठीक ले तो जेको भी कयो दा
2: अलाजे शुक्र
0: मंगनहार। अच्छा ये गुलाम हुसैन उमरानी बुधायो था कें नाले करना चाहो?
2: यार दोस्त अला दाद मार मोहम्मद अली मार पठान खान पटकर अब्दुल्ला गवर तंजो प्रोग्राम बदे को अला दाद मार मिट्टी सुमरो एकड़ो अर्ज थी
0: जी जी हुकुम हुकुम अदा
2: कादर कलर के ते गोरा वडो मगे ते गलान में ते एडो मानो प्यारो वासी न
0: हां सही से बिल्कुल कादिर कादिर साहब असन जो सीनियर जी जी जी जी बिल्कुल असन कादिर साहब अगर असन के बुधे पियो नबी भी बुधे पियो त असन के पर्सनली रिक्वेस्ट कंदा से त तवा वापस अचो ता जा फैंस ता जा दोस्त ता के दिल जी गहराइन सा वेलकम करन चाहन ता
2: ठीक है सर ओके
0: थैंक यू सो मच
2: ओके
0: थैंक यू सो मच जनाब हमारे साथ थे बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं राइट मैसेज में जाइए SKR टाइप कीजिए अपना मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए 8881 पर हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर आप हमें फेसबुक पेज पर जाकर हमारे GFM88 नेटवर्क के पेज पर जाके भी अपने दिल की बात लिख सकते हैं और हमारे साथ चैट कर सकते हैं हम आपके साथ मौजूद हैं लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम
3: सर वालेकुम
0: सलाम केरा निसार पिता भी साहब केड़ा हाल चाल है ठीक ठाक है हो
3: खैर लग गया कहीं तो पांच और बताओ
0: फर्स्ट क्लास पिता भी भाई बताओ प्रोग्राम किए तो ले

0: पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
0: Bank Islamini Laya, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नु पदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जी जनाब, वेलकम बैक चाइस तवे छोड़े मारे छड़ियो कहर थी वियो जनाब कहर अही जबरदस्त एक ट्रैक तवा के बुधायो से अपाजे एकड़े जबरदस्त कॉलर जी फरमाइश थे तवा भी असा के कॉल कर सको था 03000113488 ते असा के कॉल कियो असा के एसएमएस भी कियो 8881 ते टाइप कियो एसकेआर मैसेज में वही करें टाइप क्यों एसकेआर आई मैसेज टाइप क्यों उन जे बाद सेंड क्यों 8881 ते वठो ता हाने शो जी नेक्स्ट कॉल दिसों था सा सबनी सा जज जे को है लाइन ते केर है त हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब मुजा प्यारा भा मीठा भा केर सा सबनी सा गद
1: नियाज अली
0: कलोड़ो मेहर अली कलोड़ो साहब ताजी आवाज सफाल की पे अच्छे मेहर साहब के हाल चाल है ठीक ठाक है नौशेरो फिरोज जरा सब के हाल में है
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ताजी ता बुधायो
0: फर्स्ट क्लास नौशेरो में थदी हवाएं हलन थी हूं
1: जी बिल्कुल हलन थी वला जी थोड़ी कटा
0: अच्छा छो त गर्मी भी तो पांच असर दिखारी थी ना दादा
1: जी मतलब तांडे खारी नहीं पछाई
0: हां ने वणण वाली आ तो कावड़ तो कंदी ना गर्मी
1: कंहिंजे
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू मेहर भाप नौशेरो फिरोज का तां असांखे कॉल कई थैंक यू थैंक्स अ लॉट मेहरबानी जी जनाब हमारे साथ है मेहर साहब फ्रॉम नौशेरो फिरोज आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब कहीं चाहे कहीं पर भी आप हमें सुन रहे हैं 03000113488 पर लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
0: वा बरकातहु
2: तवारे सत्र भतिया है
0: आए हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह
2: तो करे तारन में की सिंदन में की थे
0: वाह वाह वाह वाह वाह
2: तो के बद से देर के माइंड का मजा करी
0: वाह वाह वाह जबरदस्त क्या
2: भाई सजन चाचर को ड्रागे को क्यों गलाया
0: सजन चाचर साहब केड़ा हालचाल है तवा जो नालो इलाही प्यारे वा सजन चाचर साहब ताजी शायरी तमाम घणी प्यारी हुई उम्मीद है तवा बिल्कुल एक जबरदस्त आई परफेक्ट इंसान हुंदा
2: भाई तवा जी ने खसर का भी खाई आसा जो इतनी शर्मा सा है
0: जी जी जी सिर रखेंते
2: अपना गिरा होवे तोता की छा होवे
0: कंहिंजे अच्छा ठीक आ सजन भाई मां तांखे हिकड़ी ब्रेक आहे गानो आहे न्यूज़ ब्रेक आहे पो इन जे बाद यो गानो इंशाल्लाह ताला बुधाईंदोमांव थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई सजन चाचर भाई और अब आपको सुनवाते हैं फौजिया सुमरो का बहुत प्यारा सा गाना रुगोडू जान डोह जानी नसीबन जना है इन गाने के बदो आई खोर सारा जाय क्यों

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते इस्लामाबाद मथां हमले जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि थी रही आहे त मख़सूस क़बीलनि जा माण्हू अची रहिया आहिनि। माण्हू या चंदो जमा करण बदिरां दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग ते ध्यानु हुजणु घुरिजे। कंहिंखे एहतजाज करणो आहे त पंहिंजनि इलाइक़नि या शहरनि में कनि। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी जो चवणो हो त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में मुल्क जे गादी वारे शहर ते काह नथी करे सघिजे। कंहिं अदालती फैसले जी भञकड़ी कई त तो हिन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाकियो पेश आयो आहे। तव्हांखे नथो सूंहे त हिक तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि ऐं ॿिए पासे धरणनि जी तयारी कयो। खैबर पख्तूनख्वा जे शहर कुहाट में दहशतगर्दनि जो पुलिस लाइन्स जी मस्जिद ते अपघाती हमिलो ऐं फायरिंग। 5 पुलिस अहलकारनि समेत 16 शहरी शहीद, 57 ज़ख़्मी। पुलिस जी जवाबी कार्रवाईअ में 6 दहशतगर्द मारिजी विया। IG खैबर पख्तूनख्वा चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमिला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्द हमिले जी मज़म्मत, ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
1: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Hermano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
0: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूदु आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिंजे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि। ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां, ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मेज़ाइल सलाहियत ख़तमु करे छॾी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: प्रोग्राम से अच्छी गल मेरा पर एफएम 94 जो आवाज सवान जी समात ने पहुंचे पियो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असान जी स्टूडियो में मौजूद आहिन होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन गुर्दे पिते मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जो इलाज के वने तो पाइल्स आहिन उन जो बगैर ऑपरेशन जो कामयाब इलाज के वने तो संदन जोड़न गोडन जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधन में अचण शुगर ब्लड प्रेशर शर दिल जा मर्ज फालज खंग टीबी मादे जो सूर मादे जी अल्सर त्री जो बधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी जो कामयाब इलाज कयो वने तो काल जी तरफ हलूं पया अस्सलाम वालेकुम आवाज कटजे पियो मुंजा साईं आवाज कटजे पियो हाँ हुकुम कयो छा पुछंदा अदे जो आवाज़ माज़रत सां सम्झ में न पियो अचे तंहिं करे मजबूर सां ई ॻाल्हि करणी पवंदी आहे जॾहिं बि आवाज़ सम्झ में न ईंदो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब सिंह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: साईं मुंहिंजा केर साहब ॻाल्हाए पियो
1: मामद खान मैसर कोट क्या तो मैसर को
0: जी जी खुश आमदी चाहूं था मैसर साहब छा पुछंदा डॉक्टर साहब का
1: सजलाए तो डंगिर में डाडो सूर तो पे दफा
0: अच्छा जंगन में सूर तो पे बुदो एफएम बुदो डॉक्टर साहब के बुदाइंदो या रूबरू दिखारे वणो भा
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब
2: जैसे बिल्कुल एसाबी कमजोरी जी अलामत आए एसाबी कमजोरी में जैसे अड़े किस्म की तकलीफ थे थी तो टॉनिक बुधाइन त जेके खजूर आहिनि रोज़ाना राति जो पंज दाणा खजूर जा खीर में ॿ तरीक़ा आहिनि हिकु त या त खीर में राति जो ग्रैंड करे जूस ठाहे पी सघो था वरना राति जो पंज दाणा या सत दाणा खजूर जा राति जो पाणी में पिसाए रखो सुबुह जो नेराणे हुनखे मसले ऐं जेको आहे सो या कपड़ छाण करे या जूस कढी उहो पाणी पियो राति जो जेको आहे सो पिसाए रखो त सुबुह जो पियो जेकॾहिं सुबुह जो पिसाए रखो था त राति जो पियो इनखे नबीज़ चइबो आहे ऐं हीअ नबी करीम सां सम्झनि जी सुनत आहे उहा काफ़ी जेको आहे सो अलाह ताला जी महिरबानी सां शिफ़ा ॾिए थी उहो बि इस्तेमालु करे सघो था वरना होम्योपैथिक में जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते उनजो इलाजु मौजूदु आहे
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चई मेरा पर एफएम 94 तां लाइव पेश कयो पियो वञे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेकी मूंखे लाइव कॉल ज़रिए टिप्स ॿुधाए रहिया आहिनि कॉल जी तरफ़ हलूं पिया अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम साईं
0: साईं मुंहिंजा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो हा जी सियाल साहिबु छा पुछंदा डॉक्टर साहिबु खां जी अदा
1: हा जीअं ई गर्मी शुरू थिए हा मां हिन छुड़े पाणी लाहां थो खार खे गोरी गोरी थी
0: पियो सिहत जी ॻाल्हि जी मेरा पर एफएम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ते पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेके अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमे छंछरु आचरु सूमरु ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुठियां पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि 0301-2194-851 अव्हां कंहिं बि वक़्तु राबतो करे सघो था असांखां मालूमात वठी सघो था सिहत बाबति कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम वालसलाम दुआ अलहमदुल्ला केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो
1: आमिर गाॾी थो ॻाल्हायां आराणी मां
0: हा जी आमिर गाॾी छा पुछंदो
1: डॉक्टर
0: साहिबु खां अच्छा मैरापुर खां ॻाल्हाईंदो वेझो आहे सुबुह जो ॾेखारे वञे डॉक्टर साहिब खे वधीक बहितर थींदो बाबा हिन जो प्रॉपर इलाजु मौजूदु आहे चेकअप फीस ऐं फ्री आहे सुभाणे छंछरु जो ॾींहुं आहे छंछरु आचर जुमे ते फ्री हूंदी आहे डॉक्टर साहिब जी
1: हा बच्चा
0: वज़न वॾो थी वियो ॾेखारे वञा सुभाणे ठीकु आहे बाबा
2: जिसे बिल्कुलु आराम जे हवाले सां ख़ुशख़ाश जेको असां चवंदा आहियूं रोज़ाना राति जो अधु चमचे खीर में काढ़े ऐं उहो खीर पीअण सां काफ़ी आदत ई सुकून अची वेंदो आहे वरना उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि इन जे करे बहितर इहो आहे त रूबरू ॾेखारे ऐं उनजी ट्रीटमेंट कराए वञे
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेरा पर एफएम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे त ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی محبت ہیں پانچ قیمتی وقت کری اسٹوڈیو میں انداز ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشین۔

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पुलिस जी जवाबी कार्रवाई में छह दहशतगर्द बीमार जी वया। आईजी केपी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी ए बेन पारां वाक्य जी मज़म्मत, जख्मियों के तिबी सहूलतू देने की हिदायत।
2: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physical. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi government. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
1: सऊदी अरब की सलामती ते ठाह नथो करे सकजे। सऊदी की सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो त सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कहें भी जारहान कदमन खिलाफ सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयो। पाकिस्तान हरमैन शरफेन की हिफाजत लाए उते मौजूद आहे। कहें भी जारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासी। यमन में सरकारी फौज ए हुसैन की तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू, 63 जणा मारजी वया, केतरा ही जख्मी। यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बणायो वियो आहे, जैं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थियो। केतरनी हंधन ता बागी फरार थी वया आहिनि।

ईरान जंग बाबत वो फैसलो करण वो अया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करण वो फैसलो भी थी सके तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाय तैयार ना है असा अड़ो मुआदो कदी जो अस बेहतर हों अमरीका ईरान की एटमी मेजाइल सलाहियत खत्म कर छी है। सऊदी अरब से हमला यूए की खुशहाली ए सलामती खतरो बहरान के खात्मे गालन जो सिलसिलो शुरू किया वे यूए के सदारती सलाहकार अनवर करगाश है तो ईरानी सदर से वली अहद की मुलाकात में माजी के विसारे अगत वे तफाक थो मुस्तबिल पे कदम हमला रोकण होजन घुर्जे। सिंध असेंबली मक्का मुकरमा से ड्रोन हमले खिलाफ मजहमती ठहराव मंजूर कर वरतो सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो तरमीमी बिल भी मंजूर पीटीआई के हामी मेंबर सजाद अली पारा बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ ठहराव पेश साबिर कायम खानी ध्यान छिकायो नोटिस से गालंदे हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पीण के पानी जो शदीद बोहरान पैदा थी वो है सिंधु दरिया के कप से होजन बावजूद रावासी गदलो पानी वापरण से मजबूर है।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयोन्नी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंस दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगे द खूबुन वलवत वजरिमुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम। अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808347।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए FM 94।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
1: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमान होता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई जक चुहम द सास की द माशुमान द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
4: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: म
0: बहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाँ यचो बहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94
1: मेहराबपुर 03000 3105 109 03 double जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहराबपुर 03000 3105 109 03000 3105 109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, सिर्फ 3 दिन में जल्द

कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखार।

मिल्क रेस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94। मिल्क रेस ब्यूटी शो में तमाम सभी सुनने वालों को, चाहने वालों को, प्यार वालों को, मोहब्बत वालों को वेलकम भरी कार खुश आमदी जी हैं वशात के और पखैर रागले। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक और अपने घर में घर वालों के साथ खुश होंगे और मोहल्ले वालों का भी ख्याल रखते होंगे, सब में प्यार मोहब्बत खुशियां बांटते होंगे और यकीनन बांटनी भी चाहिए।

0: जी दोस्तों, हूअं त महदूद हिकिड़े टॉपिक लाइ जेको आहे त कुझु जेको आहे त असांखे दोस्त चई रहिया हूंदा आहिनि त टॉपिक छा आहे। मां अॼु बिल्कुलु काफ़ी ॾींहनि खां वठी करे अव्हां खे आज़ादु रखियो आहे, आज़ादु छॾियो आहे त हर माण्हू पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो पैगाम, पंहिंजो मैसेज हू पंहिंजे पारां ॾिए, न कि हुनखे जेको आहे त कंप्यूटर वांगुरु हिकिड़ो प्रॉम्प्ट ॾिनो वञे त बाबा तव्हांखे फ़क़ति इहो ॻाल्हाइणो आहे, तव्हांखे हिन ते ई ॻाल्हाइणो आहे, तव्हांखे पंहिंजी का ॻाल्हि, पंहिंजी का क्रिएशन, पंहिंजो को तव्हांखे जेकॾहिं टैलेंट आहे, का ॻाल्हि आहे, को कचहरी आहे, को मैसेज आहे, नियापो आहे, उहो तव्हांखे पंहिंजे तरफ़ां ॾियणु घुरिजे, न कि असां तव्हांखे का लाइन लकीर पाए ॾियूं। हा, लकीर फ़क़ति एतिरी आहे अख़लाकियत जी आहे, उहा मूंखे चवण जी ज़रूरत बि न पवंदी। सभई असीं सिंधी मोहबती ऐं सिंध में रहंदड़ तमामु उर्दू, सिंधी, जेके बि पंजाबी आहे, जेके बि दोस्त रहनि था, उहे सभु असांजी सकाफ़त, असांजे कल्चर सां जुड़ियल आहिनि। इवन किथे किथे त मूं इहो बि ॾिठो आहे त उहे असां खां वधीक असांजी रिवायतुनि जो ख़्यालु रखंदे बिल्कुलु प्रॉपरली उन नॉर्म्स में, एथिक्स में उहे उते असां सां गॾु रही रहिया आहिनि। अच्छा, हूअं त जेको आहे त प्यार मोहबत जी प्रचार कंदो आहियां मां बि, ऐं अव्हां बि सभु मोहबती माण्हू आहियो त मुंहिंजे ज़हन में हुयो त हिकिड़े कंहिं प्यार मोहबत जे प्रचार सां ई जेको आहे त प्रोग्राम जो आगाज़ कजे, को गीत अहिड़ो अव्हां जे नाव कजे, पर उहो असां सेकेंड ते रखंदासीं। पहिरीं असां जेको आहे त प्रोग्राम में जेको आहे त हिकिड़े ख़ूबसूरत मनकबत कसीदे सां स्टार्ट कंदासीं, जिन जी फरमाइश बार बार असांखे जेको आहे त मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु ऐं एम सिद्दीक साहिबु पिणु कंदा आहिनि, स्पेशली मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु। त पोइ मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां गॾोगॾु जीए एफ एम 94 मेहराबपुर समेत जिते जिते भर पासे में असांजी ट्रांसमिशन ॿुधी थी वञे, उन्हनि सभिनी महबूबनि जे नाव असां कंदासीं अॼोको ई कसीदो डेडिकेट। त पोइ गॾिजी करे असां इंजॉय कंदासीं ई कसीदो, ऐं पोइ वरी वापसि विढ़ंदासीं, अव्हां जूं फ़ोन कॉल्स बि वठंदासीं। त पोइ इंजॉय कयो ई कसीदो ऐं ॿुधंदा रहो जीए एफ एम 94 मेहराबपुर।
1: आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109 0300 3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती।
2: सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।

सितारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: जी दोस्तों बिल्कुल अवां जी फरमाइशूं लाज़मी पूरियूं थींदियूं आहिनि ऐं कंदा बि आहियूं, कुझु रहिजी बि वेंदियूं आहिनि, पर असां बि अवां सां कुझु ॻाल्हाइण था चाहियूं। असांखे बि जेको आहे त रिप्लाई घुरिजे, ऐं रिप्लाई फीडबैक जो आहे तमामु प्यारी, सिंपल ऐं आसान ॻाल्हि आहे त प्रोडक्ट असां का न का इस्तेमालु करे रहिया हूंदा आहियूं हूअं बि, पर छो न जेको आहे त असांजी दावा खे तव्हां दलील ॾियण जो मौक़ो ॾियो। त पोइ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम।
1: ऐं वालेकुम अस्सलाम।
0: केर साईं, किथां खां?
1: साईं गुलाम फारूक राजपुर, लेरापुर में, मेरा जी राजपुर मेरा जी।
0: केड़ो राजपुर साईं?
1: गुलाम फारूक राजपुर।
0: गुलाम फारूक राजपुर साईं, वेलकम, भली कार प्यारा।
1: तो खेल लग गया
0: ए वन अल्लाह जसान। मां समझा तो आवा जी कॉल फर्स्ट टाइम असाए प्रोग्राम में शामिल थिया?
1: नहीं, आज हानी आज लगिया कॉलोनी,
0: आज आज आज ही कहिया ना, आज ही लगी
1: कंहिंजे
0: मुतालिक़ आहे ख़बर चार ॿुधंदा अचो पिया प्रोग्राम त ॿुधायो भला। त पोइ ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो पिया? जी बेहतर न हुजे त पोइ तव्हां ते मयार न आहे, पोइ असां तव्हांखे न चऊं न। त पोइ सुभाणे तव्हां जेका कॉल शामिल कंदो उन में असांखे प्रोडक्ट जे बारे में फीडबैक ॾींदो इस्तेमालु करे। जी क्या ॿियो छा चवणु चाहींदो?
1: सलामत
0: हुजो, सलामत हुजो, वॾी महिरबानी प्यारा, कुर्ब लख लाइक।

0: जी साईं, इहो राजपाल साहिब जो जेको आहे त पैगाम हुयो, हर जहान खे अलाह पाक ख़ुशि रखे ऐं इबादतूं कयो, इंजॉय कयो पंहिंजी लाइफ खे बि, टाइम ॾियो पंहिंजे बचनि खे। इहो मां थो पियो चवां, साईं त कोन चयो, पर साईं फसल खे टाइम ॾिए थो त फ़िलहालु पोइ बचनि लाइ उहो करे थो बंदोबस्तु। ऐं असां चवण इहो हूंदो त टाइम ॾियण सां गॾो गॾु सुबुह सां उथी करे फ्रेश थी करे जेकॾहिं तव्हां ब्यूटी क्रीम ऐं ब्यूटी सोप सां मिल्क राइस जी वेंदव त असांखे बि ॾाढी दिलि बाग़ बहार थींदी, ख़ुशी थींदी। कॉलर लाइन ते आहिनि, मौजूदु कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हलो
1: हलो,
0: केर अदा किथां खां?
1: अस्सलाम वालेकुम साईं।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर प्यारा किथां खां?
1: असां बहु ॻाल्हाईंदा सगिन खां, मोहम्मद बख्श चनो थो ॻाल्हायां।
0: सगिन खां मोहम्मद बख्श चनो, वेलकम, भली कार साईं प्रोग्राम में।
1: हा साईं, तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो त ॾाढो सुठो आहे।
0: लख थोरा लख थोरा।
1: ॿियो आहे असांजे पाड़े जो असलम चनो,
0: जी
1: उहो रेडियो खणी ईंदो आहे पिया, ॿुधंदा आहियूं गॾु।
0: शाबाश अथसि।
1: हा ॿियो कहिड़ा साईं?
0: दुआ दुआ अलाह एहसान।
1: हा या तव्हांजी क्रीम वठी आयो आहे?
0: केरु वठी आयो आहे?
1: हेलो
0: जी जी, केर वठी आयो
1: आहे?
0: वठंदो तव्हां लाइ वठी आयो, पंहिंजे लाइ? हा ॻाल्हि रहियो असलम साईं, कहिड़ा हाल
1: आहिनि?
0: असलम चनो साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? कहिड़े खां, कंहिं खां वठी आयो?
1: ख़ुशी ख़ुशी दुकान तां सर।
0: पोइ भाकुर पातव असांजो सलाम ॾिनव यार खे, ज़फर इकबाल साहिब खे। हा हा हा हा, बिल्कुलु असलम चनो साहिब, पोइ बिल्कुलु बिल्कुलु। जी जी लाज़मी। हा, रूटीन जी ॻाल्हि आहे न, डेली तड़पलियल थींदो त डेली इस्तेमालु थींदी शइ, ऐं असां ॿियूं प्रोडक्ट बि डेली कंदा आहियूं त हुनजी जॻह ते हिकिड़ी सुठी शइ इस्तेमालु कंदासीं, हुनखे रिप्लेस करे छॾंदासीं। बिल्कुलु ॾींदी, बिल्कुलु ॾींदी, असां रिकमेंड कयूं था त बिल्कुलु ज़ाहिर आहे, कंहिं चङी शइ जे लाइ माण्हू प्रोमोट कंदो आहे हुनखे। जी साईं, छा चवण? जी साईं, सभिनी खे सलाम मुंहिंजे तरफ़ां। बिल्कुलु जलाल जो ॿुधाईंदासीं, वॾी महिरबानी प्यारा, कुर्ब, थैंक्यू, लक लाइक। बिल्कुलु, मां बेहद थो रहियो आहियां सभिनी महबूबनि जो प्रोग्राम में, अव्हां रिस्पॉन्स इहे यकीन ॾेई रहिया आहियो त अव्हांजी कॉल जो तादादु वधियो आहे, पर गॾो गॾु असांजी प्रोडक्ट जी परचेस बि वधणु घुरिजे, छाकाणि त प्रोडक्ट असांजी टिनि ॾींहनि में दावा थी करे त टिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट नज़र ईंदो, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले। ऐं मां बार बार थो चवां त असां भई सखणी दावा न कंदा आहियूं, दलील ॾींदा आहियूं, त दलील ॾियण जो मौक़ो असांखे ॾियो, असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो रेगुलरली, न फ़क़त पाण दोस्तनि ताईं बि पैगाम पहुचायो, पोइ असांखे फीडबैक ॾियो। कॉलर शामिल कंदासीं, हिकिड़ो कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में।
2: हलो,
0: अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
2: सलामती
0: यकीन आहे मूंखे, यकीन आहे वेंदो, छाकाणि त ॾिसो न, न न न न न मूंखे दिलि जाए आहे, मूंसां त छा, अवां कंहिंसां बि न ॻाल्हाईंदो, छाकाणि त अव्हांजी मिज़ाज ऐं मोहबत जो अंदाज़ आहे हर माण्हू जो हुअणु घुरिजे। ॾिसो न, कूड़ त हूअं बि, कूड़ त हूअं बि ॾोह बि आहे, गुनाह बि आहे, ऐं ग़लति असरु आहे, बचनि ते बि ग़लति असरु पवंदो कूड़ जो, कूड़ ज़रूरत कहिड़ी, मुंहिंजी दिलि ख़ुशि करे तव्हां पंहिंजी दिलि में विसविसा विहारे छॾंदो, पाण मुतमइन न हूंदो, असांजी दिलि तॾहिं ख़ुशि थींदी जॾहिं तव्हां दिलि सां ख़ुशि थींदो,
2: ऐं तव्हां दिलि सां ख़ुशि थी करे जॾहिं असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदो त पोइ असांखे मज़ो ईंदो बेहद। जी जी बिल्कुलु, अलण जो बि हलाईंदासीं, शामिल कंदो दोस्तनि जा नाव खाईंदा।
1: साईं
2: वॾी महिरबानी साईं, कुर्ब लख लाइक़ मोहबतूं, थैंक्यू।

0: जी दोस्तों, फरमाइशन जो सिलसिलो भी काफ़ी वधी वियो आहे, असां फरमाइशूं बि अवां जूं प्ले कंदासीं ऐं उन सां गॾो गॾु असांजी दिलि चवे थी त हिकु अधु जेको आहे त असां अवां खे पंहिंजी तरफ़ां बि को ख़ूबसूरत जेको आहे त गीत ॿुधायूं, त पोइ उमेदु आहे तव्हांखे पसंदि ईंदो, छाकाणि त हीअ न फ़क़ति मुंहिंजे दिलि जी आवाज़ आहे बल्कि ही असां तमामु सिंधियुनि ऐं सिंध वासियुनि जी दिलि जी आवाज़ आहे। हर इंसान जी दावा इहा ई आहे जेका असांजो सिंध जो लीजेंड आर्टिस्ट, आवाज़ जी दुनिया जो जादूगर मोहतरम जनाब मंज़ूर सखीनाणी साहब थो करे। त पोइ अचो त गॾिजी ही गीत इंजॉय कयो।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइस ब्यूटी।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश शो सा गड आऊ आ अबे चौहान आ मा बुदी रहा हो GFM 94 मैरापुर जी दोस्तों अमा जो कॉल्स अची रहन असा अन्या त नंबर भी पहजो आज के दिन में रिपीट कोन कयो आ है पर अमा जो कॉल्स एतरी अची रहन जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है पर रिस्पांस न फ़क़त जो आ गीत बुधण की हद ताई हुए असा सा गाल बोल करने लाय भी हुए असा के फीडबैक लाय भी हुए छाकाण त मोहब्बतन के बदले में मोहब्बत ही कई वेंदी आहे इन में एक तरफा मोहब्बत न हलंदी आहे सो मान के बदले में मान डिबो आहे सो भी असा अवां खां वधीक कुछ कोन था घुरूं असा पंहिंजी प्रोडक्ट के प्रमोट करण लाइ सिर्फ़ अवां जो फीडबैक था चाहूं इस्तेमाल एक भेरो करण शर्त आहे उन खां पोइ जेकॾहिं पॉजिटिव रिज़ल्ट आहे त पोइ असांजो राइट आहे त ॿियूं प्रोडक्ट खे पासे करे असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु कई वञे मिल्क राइस जूं जेके प्रोडक्ट आहिनि उन में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम शामिलु आहिनि ऐं इहे जेके बि तमामु प्रोडक्ट आहिनि मिल्क राइस जूं उहे अवेलेबल आहिनि अव्हां जे पंहिंजे शहर जे हर वॾे जनरल स्टोर ते ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर हफ़ीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोडक्ट जी कंहिं बि शॉप ते जनरल स्टोर ते अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर मिलाइणो पवंदो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9 इन ते कॉल अव्हां ॻाल्हि ॿोल कंदो मलिक ज़फ़र इक़बाल या एम सिद्दीक़ साहब सां अव्हांजे स्टोर ते जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट अवेलेबल थी वेंदी असां सां गॾु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहिनि कॉल प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं अस्सलाम वालेकुम साईं जी मुंहिंजा साईं अव्हांखे सॼो मैरापुर ऐं भरपासो ॿुधी रहियो आहे जी कयां
1: साईं छा हाल आहे अली ॾिनो गांगरो मैरापुर मां थो ॻाल्हायां अल तसवर जनरल स्टोर
0: तां अली ॾिनो गांगरो अल सफ़र जनरल स्टोर तां वेलकम भलीकार साईं
1: जी सर छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो
0: A1 अलाह जा एहसान अवां ॿुधायो कहिड़ा हालनि ख़ुशि आहियो
1: बाबा मौला करम थो ॾाढो असांखे मज़ो पियो अचे तव्हांजो प्रोग्राम डेली ॿुधंदा आहियूं साईं
0: लख थोरा
1: हा ॾाढो मज़ो पियो अचे ऐं ॿी ॻाल्हि असांजा दोस्त आहिनि ॿ टे उन्हनि खे डेली कहिड़ी चऊं पिया
0: जी जी
1: पंहिंजे
0: दुकान ते असांजी प्रोडक्ट
1: साईं बिल्कुलु अवेलेबल कराईंदासीं मां लॻो पिया कोन छा डिस्ट्रीब्यूटर किथे आहे किथे आहे किथे मिलंदो
0: तव्हां हेल्पलाइन नंबर असांजो मिलायो
1: 0300-310-510-9
0: बिल्कुलु हिन ते राब्तो करे अव्हां मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदो ऐं मुंहिंजा सलाम बि ॾिजोसि प्रोडक्ट अवेलेबल बि कयो अव्हां पाण बि डेफिनेटली जेको आहे त का प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा हूंदो असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु करे ॾिसो टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॾींदी वॾी महिरबानी प्रोडक्ट अवेलेबल करायो तव्हांजो नालो ऑटो शामिल थी वेंदो प्रोग्राम में प्रोडक्ट पाण वटि अवेलेबल करायो तव्हां ॻाल्हायो साईं मलिक ज़फ़र इक़बाल सां ऐं प्रोडक्ट खे न फ़क़ति अवेलेबल कयो पर दोस्तनि खे रिकमेंड कयो ॿुधायो त हीअ प्रोडक्ट सभिनी खां बेस्ट आहे उन खां पोइ तव्हांजो नालो शामिल थी वेंदो असांजे प्रोग्राम में मुंहिंजा भाउ
1: जी जी सर न बिल्कुलु सर इनशाला मां राब्तो साईं जेको तव्हां नंबर ॾिनो आहे न मां साईं सां राब्तो करे पोइ हाणे जेकी चवंदो पोइ कंदासीं को इशू न आहे
0: कुर्ब कुर्ब लख थोरा वॾी महिरबानी प्यारा
1: ॿियो साईं ख़ुशि आहियो न
0: दुआ दुआ
1: ऐं साईं असां अर्ज़ु आहे हिकिड़ो
0: हुकुम
1: बाबा सूफ़ी फ़क़ीर रजब फ़क़ीर आहे हिन जो कलामड़ो हलायो
0: बिल्कुलु बिल्कुलु रजब फ़क़ीर जा असां हलाईंदा आहियूं डेली उहो बि शामिलु कंदासीं प्रोग्राम थैंक यू प्यारा वॾी महिरबानी
1: अलाह हाफ़िज़ महिरबानी
0: कुर्ब ओके अलाह हाफ़िज़
2: रंगत को रोशन करे दाग धब्बे, झुर्रियां और खीर महा से फौरन कम करें। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: जी दोस्तों मोहब्बतूं अवां जूं अवां जेको आहे त असांजी प्रोडक्ट खे रिस्पॉन्स ॾेई रहिया आहियो ऐं अञा बि अवां जो फीडबैक जेको आहे अवां पाण बि ॾींदो ऐं असांखे फीडबैक इन्हनि तमामु तर जनरल स्टोर्स तां मिली वेंदो जिन ते प्रोडक्ट अवेलेबल आहे। सो अवां जूं कॉल्स ऐं अवां जूं दावाऊं उहे अखियुनि ते, पर असांजे जनरल स्टोर तां जेसीं ताईं असांखे रिस्पॉन्स न मिलंदो असां सम्झंदासीं अवां जेको आहे त फ़क़ति जेको आहे त असांजी दिलि रखण लाइ इहा ॻाल्हि करे रहिया आहियो, पर हिन महिल ताईं जंहिं बि प्रोडक्ट परचेस कई आहे या प्रॉपरली इस्तेमालु करे थो त पोइ उहो डेफिनेटली असांखे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ॾींदो, हुन जे बारे में प्रॉपरली ॻाल्हि ॿोल कंदो। असांजा जेके जनरल स्टोर्स आहिनि जिन ते मिल्क राइस जूं प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि, उन्हनि मंझां ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफ़ीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा आऊं अव्हांखे हेल्पलाइन नंबर ॿुधाईंदो हलां, हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराए सघो था। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9 ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था, असां सां ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियो था, त पोइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर अव्हां डायल कंदो। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-931-9667 0300-93-6607। असां सां गॾु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहिनि, कॉल प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? ए वन दुआऊं, केरु प्यारा किथां खां? महबूब अली शर फिराम ठरी मीरवा, कहिड़ा हाल आहिनि मुंहिंजा भाउ? ख़ुशि आहियो? ए वन दुआऊं ॾियो, हाल अहिवाल? वॾो रेडियो अथव, स्पीकर अथव, हलायो था पूरे तर में?
1: साईं बिल्कुलु ध्वजु साईं बाक़ाइदे धूड़िया मथा पिया आहिनि साईं।
0: ईअं
1: हाय हाय, मिल्क राइज रुगो था हली आहे साईं, मिल्क राइज रुगो ॻोठ में पड़ो थो ॾियां सर।
0: पड़ो ॾियो था, पाण अञा कोन वधी अथव
1: साईं। मां जीअं तबियत ख़राबी विचारा वठी तव्हांखे टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॿुधाईंदुसि मां।
0: उहो त टे ॾींहं गुज़री विया आहिनि ॻाल्हि करण खे।
1: न
0: न न कूड़, मूंखे यकीन आहे, मूंखे यकीन आहे कूड़ को बि न हणंदो, को बि न हणंदो ऐं इहे इहे ॻाल्हियूं बि न आहिनि कूड़ बिल्कुलु बिल्कुलु। सिर्फ़ पंहिंजे लाइ न, संगत लाइ बि, दोस्तनि खे बि वठी ॾियो ऐं बल्कि उन्हनि खे रिकमेंड बि कयो। लाज़मी वठंदो जी जी, उहो बि लाज़मी वठंदो।
1: गुलाम शबीर आहे साईं
0: जी,
1: रोशन अली शर ॿुधे थो प्रोग्राम, रिज़वान अली, इमरान अली
0: जी जी,
1: सभु संगत खे इंशाल्लाह वठी ॾींदासीं।
0: बिल्कुलु, अव्हां जी सॼी संगत खे मुंहिंजो सलाम भाउ। बिल्कुलु बिल्कुलु, शामिल काफ़ी अॻ में बि शामिल आहिनि, फरमाइशूं इहो बि शामिल कयो अथऊं, वॾी महिरबानी।

जी दोस्तों, अवां जी फरमाइश असांजे अखियुनि ते हुकुम जी तामील कंदे आशिक निज़ामाणी जो ही गीत अवां जे नाम।

0: नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजे
1: वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से रहा हूँ आबिद चौहान आयामा बुधी रहा है GA FM 94 मेहराबपुर। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो तमाम खूबसूरत प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एग्नी क्रीम अवां जे पहेंजे शहर जे तमाम वरी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल आहिन, जै मथा खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर, अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर ते अवेलेबल आहे। इन खां अलावा जेकॾहिं अवां असांजी प्रोडक्ट खे कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते पंहिंजे वेझे शहर जे जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां असां सां गॾु प्रोग्राम में जुड़णु चाहियो था, प्रोग्राम में कॉल करणु चाहियो था, पंहिंजो फीडबैक ॾियणु चाहियो था, प्रोडक्ट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियो था, या पंहिंजी का ॿी का फरमाइश को गीत जी ॻाल्हि करणु चाहियो था। फरमाइश त असीं गीत त असीं इंटरनेट जी दुनिया आहे, जदीद दौरु आहे, कॾहिं बि किथां बि ॿुधी सघूं था। डेफिनेटली रेडियो ते कॉल करण जो हिकिड़ो पंहिंजो चस आहे, पंहिंजो मज़ो आहे। दोस्तनि खे पैगाम डायरेक्टली अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल अव्हांजो भर पासे में अव्हांजो सॼो शहर अव्हांजो ओड़ो पाड़ो ॿुधे उन में वधीक चस ऐं मज़ो हूंदो आहे, लेकिन असांजो पैगाम बे अव्हां थोरो उनखे बि इंपॉर्टेंस ॾियो त प्रोडक्ट अव्हां पंहिंजी बि का बि इस्तेमालु कंदा हूंदा उहा बि प्रोडक्ट का आसमान त न लथी आहे, उहा बि कंहिं कंपनी जी प्रोडक्ट आहे। असांजी प्रोडक्ट आज़माइण शर्त आहे। 3 ॾींहनि में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं कॉस्मेटिक्स वारनि जो दावा आहे त 3 ॾींहनि में असांजी प्रोडक्ट अव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी। त पोइ 3 ॾींहं त छा माण्हू घटि में घटि हफ़्तो ॿ बि हलाए सघे थो, इस्तेमालु करे सघे थो। उन खां पोइ असां सां ॻाल्हि करे पंहिंजो फीडबैक शेयर करे ऐं जेकॾहिं बहितर रिज़ल्ट आहे त पोइ पाण न फ़क़ति दोस्तनि खे बि रिकमेंड करे।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से गुआ है आबिद चौहान आवा बुधी रहा जी एफ एम 94 मेहराबपुर जी दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जो जितनी तारीफ़ कजन उ घटन पर अना भी अवह जो रिस्पॉन्स असा के घट मिली रो है सो कंजूसी ना होंगी मोहब्बत में प्यार में असाखी जागीर को घूम अस प्रोडक्ट चूं था इस्तेमाल कर उनको फीडबैक दियो मोहब्बत के बदले मोहब्बतों डिबियों सो उम्मीद क्यों था सुबाने ताई जो दोस्त प्रोडक्ट आजमाइंदा इस्तेमाल कंदा जनरल स्टोर्स से विजिट लाजमी कंदा जिन जनरल स्टोर्स से मैरापुर के हर नंढे वे जनरल स्टोर बल्कि नंढे न हर वे वे हर सुठे जनरल स्टोर से असाजी मिल्क राइस जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जैम जहाँ खुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैजान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ए अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर से मिल्क राइस जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इन अलावा जहाँ अना भी मर्जी के कें जनरल स्टोर या पैं शहर पैं तर पैं शॉप से मिल्क राइस जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराने चाहो था त अवां के असां जो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो असां जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 510 9 इन ते कॉल करे अवां मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब के मुंहिंजा सलाम ॾींदो न फ़क़ति सलाम ॾींदो पर हुन सां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी जे बारे में

इन सां गॾु अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुराणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा ऐं अव्हां इंजॉय कंदा ही लास्ट म्यूज़िकल ट्रेक। सिंध सलामत, साथ सलामत, अलह निगेबान।

0: आप लोग जरूर प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आके कभी कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना क्योंकि किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं हो सकती आपको। इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जोर नहीं देता कि एक तरफ आप चौदह के जनाजे हैं और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें। कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फ़र्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना, ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। मुल्क का नुकसान है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, सब के सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफ़ा वो बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो माजी में लोग फैलाते रहे।
1: वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चवा है एहतजाज के नाले से इस्लामाबाद मथा हमले की इजाजत नथी दई सके। सोशल मीडिया से गाल थी रही है तो मखसूस कबीलन जा मानू अची रहा है। मानू या चंदो जमा करण बदरा दहशतगर्दी खिलाफ जंग ते ध्यान होजन घुर्जे। कंखे एहतजाज करणो आ है तो पांजन इलाकन या शहरन में कन। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मोहसन नकवी वधिक चयो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पोए कें भी सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी करे सकजे। कें अदालती फैसले की भंजकड़ी कई तोहिन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वी। जवान के बुधाए छो है इं न गोलियो हलन तवां खामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो, तवां के नथो सूहें तो एक तरफ शहीदन जा जनाजा खजन बे पासे धरणन की तैयारी कजें।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 आई 0242460

मुखी जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो। मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो, वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो। थोरो हुन ॾे हथु वधायमि वेझो थी, थोरो हुन ॾे हथु वधायमि वेझो थी, गुलड़े तां पोपट अलाए काॾे वियो। हाणे हाणे बंदि कयां पियो हथ में हो, हाणे हाणे बंदि कयां पियो हथ में हो, नंढड़ो हिकिड़ो नट अलाए काॾे वियो। पियाकनि खे एॾो उल्को ॾेई आख़िर, पियाकनि खे एॾो उल्को ॾेई आख़िर, गोरी तुंहिंजो घटि अलाए काॾे।

ठरंदो हो। उते मरंदो गरंदो आए पियो ठरंदो हो। चरियो हिकड़ो जट अलै काडे वियो। तुहिंजा सारा वेण अञा भी उकरियल हन। तुहिंजा सारा वेण अञा भी उकरियल हन। तुहिंजो अर्पियल फट अलै काडे वियो। गाल गाल ते केडो विछड़ी दींदो हो। गाल गाल ते केडो विछड़ी वींदो हो। कोरो हिकड़ो जट अलै काडे वियो। आज़ादीअ जो साह खयमि महसूस थियो। आज़ादीअ जो साह खयमि महसूस थियो। यार ॻिचीअ मां ॻट अलै काॾे वियो। मोखीअ जो जीअं मट अलै काॾे वियो। वाणे जो तीअं हट अलै काॾे वियो।

ডেফিনেটলি আমার মন্তব্যের হল নাম্বার ওয়ান ফ্যামিলি অনেক যে उनखा अग अस शामिल कंदास एक खूबसूरत ट्रैक अमां सबनी महबूबन जे नाव म्यूजिक जे दुनिया जे उस्ताद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी खूबसूरत आवाज में ही प्यार भरियो ट्रैक अछो तो गजी एंजॉय क्यों

0: जा पीउ रेडियो ते चारई मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
3: जीजा चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
4: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रिया और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पंहिंजी ॻाल्हि दिलि जी ॻाल्हि असां सां शेयर कनि।
1: साईं, दिलि जी ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो न, असां सॼो ॾींहुं आहियूं ट्रेक्टर ऐं राति जो प्रोग्राम तव्हां यारहें ताईं कान थी लॻे।
0: क्या बात आहे यार, ॾाढो इहो ख़ूबसूरत वाइब्स आहिनि इहे, असां इहे मंज़र ॾाढा वणंदा आहिनि त ट्रेक्टर ते नंढपिण खां जॾहिं उस्ताद जलाल जा गीत हलंदा आहिनि। जलाल जो कहिड़ो कलाम ॿुधणु चाहींदो? राणो मूमल जो किसो, जलाल चांडियो। कंहिंखे अर्पण चाहींदो, कंहिंजे नाम करणु चाहींदो, दोस्तनि जा नाला शामिल कयो?
1: नालो आहे मामू आहे गुलाम शेबर
0: जी,
1: ॿियो कुर्बान अली खावल
0: जी,
1: ऐं ॿियो मुंहिंजो पाण जा आमिर अली
0: जी,
1: लाकत मुंहिंजो भाउ आहे
0: शामिल। अवां जो बि ट्रैक जेको आहे फरमाइश प्लेलिस्ट में शामिल करे छॾी आहे। लख थोरा
1: महिरबानी।

बिल्कुल अवां जूं शिकायतूं बजा बि आहिनि छाकाणि त अवां जी मोहबत आहे ऐं अवां जो चाहो आहे लगाव आहे सॼो ॾींहुं दोस्त पहिरीं ॻाल्हि कई ॾाढी दिलि सां ऐं सादी ॻाल्हि कई वाक़ई इन खे ई दिलि जी ॻाल्हि चइबो आहे त सॼो ॾींहुं ट्रैक्टर हलायूं ऐं राति जो आराम सां घर आराम बि कयूं ऐं अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं मां इंतिहाई मकरूज़ आहियां अव्हां जी मोहबतुनि जो जेतिरो मान प्यार चाहो अव्हां ॾेई रहिया आहियो शायदि उन ते शल मां पूरो लहण जी कोशिशि कयां थो ऐं शायदि अव्हांखे वणा पूरो लहां दोस्तो बिल्कुल फरमाइशूं जेकिन त अव्हां जूं असां लिस्ट में शामिलु कंदा था पिया हलूं पर हींअर ईअं जेकॾहिं लिस्ट में रुगो शामिलु कंदा वेंदासीं त पोइ ॻाल्हि चढ़ी वेंदी असां फरमाइशूं पूरी न करे सघंदासीं सो प्रोग्राम में इब्तिदा कजे तुंहिंजी कावड़ में आहे कुर्ब घणो तुंहिंजो प्यारु अलाए छा थींदो ममताज़ लाशारी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ट्रैक अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं

0: तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान के इजलास में 27 सितंबर वे लॉन्ग मार्च की तैयारी मुशावरत पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा इन वक्त मुल्क अंदर गवर्नेंस की सूरत हाई घंटी जोगी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से इंदड़ कुछ डी अंदर मुकम्मल कौम के सामू अची वो तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान में शामिल सभी पार्टी जहद में शामिल थे इतफाक किया है मड़ियल आनो निज़ाम खत्म करना है। पंजाब बलोचिस्तान केपी में आवाम जो समुंड इस्लामाबाद पहुंचो आवाम खैरात न पर बुनियादी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।